0: बात है, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय, इस गीत नूं स्पॉन्सर किया जा रहा जग दे पैरालीगल वालों। जी हाँ, जग दे पैरालीगल तुहानूं पावर ऑफ अटॉर्नी एफीडेविट बना के दिंदे ने, नोटरी सर्विसिज दिंदे ने, और किसी भी तरह के बिजनेस डाकूमेंट्स बनाने ने तो जग दे पैरालीगल नूं तुसीं कॉल कर सकते हो। एक बार फिर नंबर ले लो, जग दे पैरालीगल 6478085859। प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते मैं हाँ तुहाडा सतिंदर पाल।
1: ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ, ਹੇ

0: Alpha Optical, Jinx November, जो Golden Plaza में, Brampton में, Alpha Optical, any age, any stage, जी हाँ, उनकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए, आंखों को चेक करवाने के लिए वहीं पे 905-450 का इंतजार पर कॉल कीजिए 905-456-7733 Alpha Optical, your vision is your business.
1: तुम्हारी फेर अपना टेस्ट भी गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं, ताकि ना सिफ्ट कर लगे हैं।

यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता का सुंदर स्टैचू ना भूले नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड

कुलम्बा कुलरक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम ग्राही माम शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालनां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राजगौरवम्

यह सुप्रति पठे तस्वृद्धि कुले जात है प्रसन्ना परमेश्वरी कुल देवी स्तोत्रमिदम् सुपुण्यम् ललितम् तथा अर्पयामि भवत् भक्त्या।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदर।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं अमेरिका में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे। कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4444, 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर इस फेस्टिव सीजन में लेके आना चाहते हो, बढ़िया सा टीवी चाहिए आपको, बढ़िया बढ़िया गैजेट किचन में चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देख सकते हो, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अब अगर आपने मूव होना है, तो एच के मूवर्स आपके लिए सारे टोरंटो भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, और साथ साथ ही आपको आपके जो सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एच के मूवर्स 416-524-4164-526-7704 पे आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आपको आपने किसी किस्म का कोलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपू अब आपके लिए बहुत वहाँ लंदन में वो रोड पे पहुँच खुल चुके हैं। तो आपने किसी तरह की भी आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, तो मास्टर कोलिजन डिपू .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और इसलिए फिर आपने अगर किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो फिर आपके लिए मौजूद है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपू वाले। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, तो आप के लिए समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए करवा चौथ आने वाली है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे अपने ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। तो लेट्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये जो पुराना सा गाना है, पुराने वाले गाने जो है ना, उनका जो संगीत है वो एकदम आपके लिए मनमोहक है। तो लीजिए सुनिए, ये भी बड़ा सा प्यारा सा गीत है। जितेंद्र है इसमें, बबीता है इसमें।

हाय को फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स ऑन 10 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जो लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और अपने कमेंट्स मिलते हैं, हम कहते हैं दिल से धन्यवाद करते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का चाहिए तो आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा। एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी जो फेस्टिवल सीजन स्पेशल हैं वो देख लीजिए। फिर आपको अगर अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने ऑर्डर करना है तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। बढ़िया टीवी आपको चाहिए, बढ़िया किचन गैजेट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए तो ये सारा सामान आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का बहुत बढ़िया प्राइस पे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 0579-0045 पे कॉल कीजिए। तो अब आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में खुल चुके हैं। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। तो लेट्स गो टू this beautiful song.

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-216-1135।
1: जी हाँ, अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, तो आप सुनिएगा जरूर, बहुत ही बढ़िया है, तो आपको जरूर पसंद भी आएगा उम्मीद रखती हूँ। तो आपका जो अभी लॉन्ग वीकेंड है, थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड, उसके लिए आप सभी को लॉन्ग वीकेंड का बहुत बहुत हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को बहुत सारे हैप्पी थैंक्सगिविंग, और हमें जरूर थैंक्सफुल होना है ऊपर वाले का जो भी हमें मिलता है, तो इस तरह से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं कि जो कुछ भी हमें जिंदगी में मिला है हम उसके लिए सारे यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें दिए हैं, हम उसके लिए भी यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड थोड़ी ठंड भी हो गई है तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रात को भी हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे बहुत प्यारे प्यारे गीत लेकर के, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी पूरी मदद करते हैं, तो उनको आप कॉल कर सकते हैं 416-524-6524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको आपने खाना ऑर्डर करना है या लाइव कुकिंग करवानी है तो ये सारा कुछ आपके लिए जो है वो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है क्रेडिट पे और ब्रिटानिया पे, और लाइव कुकिंग आपने करवानी है तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने बढ़िया फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपको वो काम करके देते हैं, तो ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कॉल कर लीजिए, उनके वेबसाइट पे जाइए topchoiceelectronics.com। तो आप किसी तरह की भी आपने ऑर्डर बुक करना है फेस्टिव सीजन के लिए, बढ़िया टीवी लेना है अपने घर में, फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए 905-799-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। ये भी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है पर बहुत ही रोमांटिक सा है।

0: to say thousands of legal fees, so we can invest that into our small
1: businesses. तो आप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप जाइएगा और आपको बहुत बढ़िया प्राइसेस मिलेंगी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी. तो गाना आपका अभी आ रहा है.

जी हाँ, तो मोहब्बत की तकदीर में वास नहीं होता है, आप देख ही सकते हो। आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक। फाइनेंस की चिंता ना करो, तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवे टायर दी लोड है तो वह भी मिलणगे। चार टायर दा सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानूं सिर्फ ये दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल दी, आज ही विजिट करो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840। बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। ये आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूव होने हैं तो एच के मुगल को कॉल कीजिएगा, तो उनकी बहुत सारी टीम पहुंचाते हैं, सब जगह ही पहुंचाते हैं, तो आप जरूर वहां पे जाइएगा और आपको बहुत बढ़िया वहां पे सर्विस मिलेगी। तो आज ये बुक कीजिएगा 416-524-804-416-524-6704।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू, और खूब एंजॉय कीजिएगा और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बनाइएगा, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में जाइएगा। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लै के 1,00,000 डॉलर तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर दी लोड है तो ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीजी रॉकली फाटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 तों मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840 बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आपको गाड़ी लेनी है तो पहुंचिएगा इनके पास, तो बढ़िया बढ़िया आपको गाड़ी मिलेगी, बढ़िया प्राइस में मिलेगी। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आज आपके लिए जो लॉन्ग वीकेंड होता है तो उसमें आपको मौका मिलता है घर के बहुत सारे काम करने का, और जो जिनको कॉल नहीं किया होता है कॉल करने का, तो यूज करिए अपने वीकेंड के टाइम को। तो

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ, रात के वो भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे तो 10 से 11 बजे। तब तक के लिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वादा फला। हैव ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

आवण जान रहे गोर राखे, सर बर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर बर मह हंस हंस मह सागर, अकाथ कथा गुर बचनी आदर।

आनंद मूल अनाथ अदारी गोरमुख भगत सहज विचारी भगत बच्छल भय काटन हारे हम मार मिले पग तारे आनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुविधा खोवे

0: और थानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: GTA दे होम बायर्स मिस ना कर जायो। पेराडाइज डेवलपमेंट्स सेल कर रहे ने टाउन होम अते डीटैच कर मिल्टन ब्रैम्पटन सीटन अते विटबी दे विच। कीमत सिर्फ 6,29,990 डॉलर तो ते नाल 1,30,000 डॉलर तक दे डिजाइनर फिनिशेस HST रीबेट्स अते बहुत वडिया सेविंग्स दा फायदा लो। आज ही विजिट करो paradisedevelopments.com paradisedevelopments.com।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोई करने हारा कर दापे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते ते तुहाडा ते साडा साथ इंजी बनिया रहेगा सवेरे 10 तों 1 बजे तक ते असीं बहुत वधिया वधिया गल्लां करांगे तुहाडे नाल। एंड अज असीं बहुत वधिया टॉपिक्स लैके आ रहे हाँ और तुसीं बस शो सुनदे रहो। अज मौसम बहुत सोहणा आ ते साडे सारे सोहणे सोहणे लिसनर्स किथे हैगे आ ते कित्थों कित्थों सानू सुन रहे हो, एक बार हाजरी लवानी तां बनदी है। सो तुसी सारयां ने कॉल करना है, स्टूडियो दा इक्को इक नंबर हैगा है 905-673-3337 ते कॉल करके तुसी अपनी हाजरी लवाओ ते सानू दसो की तुहानू साडी आवाज़ वधिया आ रही है।

0: कनाडा सरकार सरहदी सुरक्षा लई सख्त कदम चुक रही है। ड्रग्स ते बंदूकां दी तस्करी नूं रोकिया जा रहा है, जिस नाल तुसी भाईचारे विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कनाडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
1: This is AM 530.

0: AM530.ca. This is AM 530, CHLO AM, an Evanoff communications station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca.
1: Canada सरकार अपराध विरुद्ध सख्ती वर्त रही है, ताजा तुसी मुहल्ले विच सुरक्षित रहो। बार बार अपराध करने वाले दी जमानत ते सख्ती, जिस नाल तुसी घर विच सुरक्षित रहो। ड्रग्स अते बंदूकां दी तस्करी रोकण लई सख्त सरहदी पहरा, जिस नाल तुहाडा भाईचारा रहे सुरक्षित। ठगी अते साइबर क्राइम ते सख्ती, जिस नाल तुहाडा पैसा रहे सुरक्षित। असी कैनेडा नूं सुरक्षित बनाउण लई अपराध विरुद्ध सख्ती वरत रहे हां। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा। कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूनां विच सख्ती लिया रही है। हिंसक अते बार बार अपराध करन वालियां नूं भाईचारे तों दूर रखण लई सिस्टम विच सुधार, तां जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
2: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियां तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा इह है वतनो दूर रेडियो। This is वतनो दूर रेडियो।
3: वतनो दूर रेडियो विच तुहाडा सारिआं दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारिआं दा सत्कार करदा है ते सिजदा करदा है कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा, जिन्हां ने वतन तो दूर आके इत्थे खुशहाली दे महल बनाए ने। ते वतनों दूर सिजदा करदा उन्हां सारे सिरड़ी इंसानां दा जिन्हां ने इस वतन दीआं तरक्कियां दीआं कहानियां लिखियां ने। वतनों दूर रेडियो सिर चुकाउंदा है उन्हां सारे दोस्तां नूं जिन्हां अपनी कामयाबी दे नाल इत्थों दी धरती ते इत्थों दे लोकां नूं दस्सिया है कि साडी शान वखरी। वतनों दूर हुण कैनेडा विच वसदे पंजाबियां लई पंजाबी संगीत, पंजाबी जवान ते पंजाबी विरसे दी खुशबू पहुंचाउण लई लै के आया है वतनों दूर रेडियो।
2: This is वतनों दूर रेडियो।

ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीके पन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.
1: Use multi-factor authentication.
0: Once again, welcome to the program. Swagat hai tuhanu sabda program de vich galbaat karan layi number again 416-910-6000. Is number te galbaat kiti ja sakdi hai. Chalo ek khoobsurat jehe geet di taraf tuhanu leke chalde haan. Tuhadi farmaish, tuhadi nazar, tusi geet sunna chaha hai. Aur enjoy karde hai is khoobsurat se geet no. Chandarmaa di चंद की जेकर असी गल करिए तां बहुत खूबसूरत है चंद्रमा. और जदों स्पेशली पूर्णमाशी हुंदी है तां फुल मून जदों हुंदा है तो उदों उस दियां वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुंदियां ने. एंड इट रियली अफेक्ट्स आवर लाइफ क्योंकि चंद्रमा नूं एस्ट्रोलॉजिकली मन दे नाल जोड़िया जांदा है. मन दे बारे असी सुनिया ही है कि मन जीते जग जीत. मतलब जे तुसी अपने मन नूं जीत लिया तो समझो तुसी दुनिया जीत सकते हो. पर प्रॉब्लम यही है कि मन नूं जीतना सब तो मुश्किल काम है. लेकिन जेकर तुसी कोशिश करते हो तुसी अपने मन नूं स्ट्रोंग रखना चाहते हो तो पानी ज़्यादा पिया करो, पानी दे नज़दीक रहा करो, चांदी ज़्यादा पहनो, तुसी अपने मन नूं स्ट्रोंग कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ हार्ड. कई बार असी जिंदगी च रूटीन दे विच चलदे रहने हैं बट वी डोंट थिंक कि जिंदगी च बहुत सारिया परेशानियां आंदियां, बहुत सारिया मुश्किल आंदियां कि कोई रस्ता नज़र नहीं आंदा. तो इहदा मतलब है किसी की कही हुई गल, छोटी जिही गल सानू पिंच कर जाती है. इहदा मतलब है कि साडे इमोशंस इमबैलेंस हैं. मैं लास्ट वीक दस्या सी कि अपने इमोशंस नू बैलेंस करन लई या अपने इमोशंस नू स्पिरिट नू हाई करन लई या अपने मन नू मजबूत करन लई तुसी एवरी मंडे जेकर चांदी का एक सिक्का अपने पिल्लो के नीचे रख के सौंदे हो तो जी चांदी की एनर्जी है वह थोड़े मन नाल कनैक्ट होकर थोड़े माइंड को स्ट्रोंग कर सकती है. इस तरह जो फुल मून होंदा है तो उस टाइम तुसी पानी ज़्यादा पियो. अजकल तो बहुत ट्रेंडी हो गया है मून वाटर बनाना. चंद्रमा की रोशनी विच तुसी पानी रख दो और सारी रात वो पानी चार्ज होंदा रहिंदा है. दैन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. उहदे नाल भी तुहाडा मन जिहड़ा स्ट्रोंग होंदा है. फिर पुराने जमाने विच तुहानू याद होएगा कि साडे नानियां दादियां दरखत के उपर चंद्रमा पूर्णमाशी वाले दिन फुल मून वाले दिन खीर बना के टंग देंदे सी ताकि चंद्रमा की पूरी रोशनी उस खीर के अंदर आ जाए और उस तों बाद सारी फैमिली नू खीर दित्ती जांदी सी. सो ये भी एक रिचुअल कह सकते हो, ट्रेंड कह सकते हो या फिर अपने मन नू स्ट्रोंग करन दा एक तरीका कर सकते हो. छोटे छोटिया चीज़ां ने बट विदाउट एनी कॉस्ट असी घर दे विच ही इन्हां चीज़ां नू यूज़ विच लिया के अपनी जिंदगी नू बेहतर बना सकते हैं, अपने मन नू स्ट्रोंग बना सकते हैं. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुहानू मिल सकती है रेडियो गोल्ड दे किसी भी प्लेटफॉर्म दे तुसी जाओगे यू विल गैट ऑल द इन्फॉर्मेशन अपनी जिंदगी नू ते अपने मन नू किदां बेहतर बनाया जा सकता है. एक खूबसूरत जिहा गीत तुहाडी नज़र. इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. कहिंदे हैं कि चांद चांद भी क्या हसी सितम ठाता है, चांद भी क्या हंसी सितम ठाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और प्रोग्राम एसएमडी सुनते रहो 5:30 से 6 बजे तक रेडियो गोल्ड. आफ्टर द शो नंबर इज 416-910-6000. जस्ट बी रेडी. आप थोड़ी जी एस्ट्रोलॉजिकली गल भी करांगे कि जेकर थोड़े हाथ विच दिल है अलग अलग जगह से तो उहदे की रीजन हो सकते हैं एंड हाउ वी कैन थिंक बेटर ऑन दैट. और मनीबंदी भी गल करांगे जिहड़ी

0: मैम आप सुन रहे हैं बीबी गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत. कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600. वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स. विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स. यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770.
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905 4573232. Clear Optical by Varun Kanda.

जीटीए की रियल एस्टेट मार्केट में स्वागत है आपका। अगर आपको लग रहा है कि टोरंटो का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी बस गिर रहा है तो जरा नंबर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहानी थोड़ी बदल रही है। अगस्त में जीटीए में करीब 5,057 होम सोल्ड हुए, जबकि नई लिस्टिंग्स पिछले साल की तुलना में। रियल एस्टेट मार्केट अपडेट में सोनम की तरफ से स्वागत है आपका। घर खरीदते समय हम सब एक नंबर देखते हैं, प्राइस, लेकिन असली सवाल है इस प्राइस के पीछे छिपे हुए कॉस्ट कितने हैं। आज बात करते हैं हिडन कॉस्ट की। न्यू कंस्ट्रक्शन हमेशा ऑल इंक्लूसिव नहीं होता। ट्रेप के मुताबिक गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस, फीस और चार्जेस

0: जबकि नए कॉन्डो लिस्टिंग्स 19% नीचे रही। एवरेज कॉन्डो प्राइस फिर भी ईयर ओवर ईयर नीचे था। सेलर्स के लिए, अगर आप घर बेचने वाले हैं तो सिर्फ मेरे पड़ोसी का घर इतने में बिका वाली कैलकुलेशन मत कीजिए। आज बायर पहले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, इसलिए आज की मार्केट में वैल्यू एक्सप्लेन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्राइस सेट करना। घर खरीदते समय सिर्फ प्राइस मत देखिए, प्राइस प्लस क्लोजिंग कॉस्ट प्लस फ्यूचर कॉस्ट इज इक्वल टू रियल कॉस्ट। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना आजकल ज्यादातर बायर्स का रियल एस्टेट प्लान पूरा नहीं होता, मॉर्गेज। बहुत से बायर्स सबसे पहले पूछते हैं आज मॉर्गेज रेट क्या चल रहा है, लेकिन असली सवाल सिर्फ रेट नहीं है, किस रेट पे क्वालिफाई होते हैं, मंथली पेमेंट, अमोर्टाइजेशन और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस बड़ी मॉर्गेज में काफी पैसा बना सकता है। कई बायर्स ये मानते हैं कि बैंक ने उन्हें सर्टेन अमाउंट के लिए प्री अप्रूव कर दिया है तो उतना ही घर खरीदना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्री अप्रूवल बॉरोइंग कैपेसिटी बनाता है लेकिन जरूरी नहीं कंफर्टेबल बजट को रिप्रेजेंट करें, और आपको प्रिंसिपल के साथ कितना इंटरेस्ट देना है ये भी देखना जरूरी है। एक स्मार्ट बायर रेट कितना है नहीं देखता, वो पूछेगा बॉरोइंग कॉस्ट क्या है, प्री पेमेंट प्रिविलेजेस क्या है, जल्दी मॉर्गेज ब्रेक पे पेनल्टी कितनी हो सकती है और रेट। घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, सही जानकारी के साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम कल की एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। सुनते रहें रेडियो गोल्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम, स्वागत है थोड़ा रेडियो गोल्ड दे विच। और चलो जी लेके चलते हैं रियल एस्टेट दी न्यूज अपडेट हो गई है हम थोड़ी जी। रियल एस्टेट इनकम्प्लीट है विदाउट मॉर्गेज, और नासिर जी साडे नाल है ओवर द फोन, स्वागत करते हैं। नासिर जी थोड़ा स्वागत है, हाउ आर यू?
1: बहुत शुक्रिया सनम जी, रेडियो प्रोग्राम सुन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।
0: वेलकम जी। और नासिर जी न्यूज चल रही सी रियल एस्टेट दी, उस न्यू रियल एस्टेट इज इनकम्प्लीट विदाउट मॉर्गेज, और मॉर्गेज दे विच बहुत सारे क्वेश्चंस हुंदे हैं अजकल, बहुत सारियां चीजां ने जिहड़ियां तुहानू करनियां पैंदियां टू क्वालिफाई। सो व्हाट यू थिंक कि जे किसी बायर ने, कोई समवन इज लुकिंग फॉर अ हाउस होम टू बाय, तो केड़े केड़े चीजां दा ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग दे विच टू गेट द मॉर्गेज अप्रूव्ड?
1: देखिए जी, दो तीन तरह के लेंडर है, और पहला जरा ए लेंडर होंगे, उन्होंने रिक्वायरमेंट एक होंगी कि 700+ बीकन स्कोर होना चाहिए।
0: ओके।
1: बी लेंडर दे आर फ्लैक्सीबल ऑलवेज, दे डोंट केयर अबाउट स्कोर, वह वेखते हैं इक्विटी किनी है, तुम पाना चाहते हो, डाउन पेमेंट कितना पाना चाहते हो, यह सारी चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होंगे। और मैं ऑलवेज ओनर कहना हूं भी अपना चाहते हो तरक्की करनी है इस कंट्री च, सुनो जी इको आ रहा है, बैक आ रहा काफी ना।
0: ओके। हाँ जी, हाँ जी नासिर जी
1: जी, तुसी अगर चाहते हो इतने बदना चाहते हो तो तुहानू बहुत जरूरी है अपना क्रेडिट बचा के रखो, और तुहानू रेट्स भी चंगे मिलेंगे, तुहानू हर चीज का ध्यान असं रखने हैं, क्योंकि साडा 27 साल का एक्सपीरियंस है, 27 साल असं बहुत कुछ सीखे है, असं कोशिश करने जो जो सीखे अपने क्लाइंट्स नू फायदा बचाइए। और मॉर्गेज वास्ते बहुत जरूरी है, अगर तुसी चंगा रेट लेना है, मैं 5% दे नाल भी 5 लाख तक तुसी कार बाय करना है, सिर्फ 5% डाउन पेमेंट दे नाल तुहानू कार मिल सकता है, सिर्फ उस सिर्फ तुहानू अपना क्रेडिट बचा के रखना पैना, क्रेडिट बचाओगे ते तुहानू बड़ी आसानी नाल असी मॉर्गेज दवा सकते हैं। ते ऐसे से कोई जानकारी लेनी है तुसी कॉल करो 6477419000, और नाल तुसी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं ऑलवेज कहना बिजनेस लाजमी स्टार्ट करना चाहिए, थोड़े जे पैसे ना तुसी रिस्क जरूर लवो, क्योंकि थोड़ी जी भी सेविंग किधर पई है तुसी उन्दे नाल तुसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुहाडे कोल 20-25% डाउन है ते बाकी जरा असी सारे सारा तुहानू असी लोन दवा सकते हैं, एक बहुत वधिया प्रोग्राम है, 5 लाख तक तुहानू लोन मिल सकता है। कोई भी तुसी ग्रोसरी स्टोर खोलना है, कोई भी तुसी डॉलर स्टोर खोलना है, कोई तुसी इंडस्ट्री लगानी है, मशीन बाय करनी है, लेजर मशीन बाय करनी, किसी तरह की तुसी मशीन वगैरह बाय करनी है, तो उनके वास्ते 5 लाख तक तुहानू बड़े आसानी नाल लोन मिल सकता है। ते कोई जानकारी चाहिए कॉल करो 6477419000 ते कॉल कर सकते हो। उनके नाल नाल तुसी अगर चाहते हो तुसी ऑलरेडी बिजनेस चो बिजनेस नू बैटर करना चाहते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜੀ, 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ

0: आवाज वापस आ रही है, समथिंग रॉन्ग आई थिंक आ रही है जी।
1: हाँ जी हाँ जी नासिर जी ट्राई नाउ
0: ना। अच्छा 50,000 तो लेके तुहानू 2 मिलियन तक, हाँ जी बैटरी हो 50,000 तो लेके 2 मिलियन तक तुहानू लाइनो क्रेडिट मिल सकती है। अगर तुसी बिजनेस लाइनो क्रेडिट की गल कर रहे हैं, अगर तुसी क्रेडिट सही है और कोई इस तरह के बिजनेस चाहिए जिथे तुहानू क्रेडिट ते तुहानू समान देना पैंदा है, जैसे कोई भी पार्ट्स तुसी देंदे हो महीने बाद 30 डेज या 60 डेज बाद तुहानू वापस पेमेंट्स आंदी है ना, ते तुहानू असीं बड़ी आसानी नाल 50,000 तो लैके 2 मिलियन तक लाइनो क्रेडिट दवा सकते हैं
1: जी।
0: ते उन्दे वास्ते भी तुसी सानू कॉल करो 6477419000 ते कॉल कर सकते हो। और अगर तुसी चाहते हो कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन या फ्रेंचाइज लेनी है या प्लाजा लेना है या प्लाजे विच कोई यूनिट बाय करना है, तो असी 27 साल का एक्सपीरियंस असी मॉर्गेज कर रहे हैं, कमर्शियल हर तरह की कमर्शियल मॉर्गेज कर रहे हैं, तो उन्हें वास्ते भी सानू तुसी कॉल कर सकते हो 6477419000 जी। सुनो जी
1: बिल्कुल नासिर जी, इस नंबर दे उपर कॉल करके तुसी नासिर जी तो इनफॉरमेशन ले सकते हो और गेट योर मॉर्गेज डन बिफोर लुकिंग फॉर अ हाउस, क्योंकि घर लभन तो पहले मॉर्गेज दा प्री अप्रूव होना बहुत बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी दा भी ना बायर दा ना सैलर दा और ना ही रियल्टर दा टाइम जड़ा है वो वेस्ट होवे। तो मॉर्गेज थोड़ी प्री अप्रूव्ड है तो तुहानू ईजीली कोई भी घर, अजकल तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ हाउस, तो घर लैन दे विच तुहानू मुश्किल ना आए या फिर तुसी बिहाइंड ना हो जाओ, अपनी मॉर्गेज नू पहले प्री अप्रूव करवा के रखो। नासिर जी एनीथिंग एल्स, अदरवाइज आई विल कॉल यू आफ्टर 5-10 मिनट्स अगेन।
0: जी बिल्कुल, मैं जल्दी जल्दी भी दसदा जावां, बहुत सारे साडे कोल डिफरेंट फ्रेंचाइजेस आईए ने, पिज्जा आए ने या इस तरह के काफी बिजनेस आए ने, ते तुसी चाहते हो अगर कोई भी अच्छा तुसी बिजनेस बाय करना चाहते हो उनके वास्ते सानू कॉल कर सकते हो 6477419000। तुसी ईवन गैस स्टेशन बाय करना, तुसी कोई भी किसी तरह की बाइंग करनी है, उनके साडे उस फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा आई है साडे कोल, ते उनके वास्ते तुसी कॉल करो 6477419000 जी।
1: बिल्कुल नासिर जी बहुत बहुत शुक्रिया और फिर थोड़ी देर बाद तुहाडे नाल गलबात होएगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। 416-910-6000 नंबर है और 416-233-7368 स्टूडियोज दे नंबर है।

0: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 jobs completed, 16 installers team, cover across Ontario, more than 9% in home stars last many years. Windows and Door manufacturer, not dealers. Yash Windows and Doors, 416-732-3600 or 416-674-7770. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ there is no mediator, manufacturer hai aur direct manufacturer to tonu very good price and good quality de yash windows and doors jo par ja ke tusi information le sakde ho. Yash ji, swagat hai tuhanu.
1: thank you very much, aapko sare shrotao ko namaskar karta hu
0: ji. Welcome, aur thodi si information de please dharam ji, yash windows and doors ke bare mein.
1: yash windows and door 2012 se window and door ki manufacturing karti hai, toronto based hamari factory hai और अक्रॉस ओंटारियो में 34 इंस्टॉलर्स के साथ हम विंडो डोर जो बनाते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं. विंटर ज्यादा दूर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में विंडो डोर बदलने की जरूरत है तो अभी फास्टेस्ट 4.5 वीक में हम जॉब कंप्लीट कर देते हैं अक्रॉस ओंटारियो. सो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट
0: 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर है. इस नंबर ते जाके तुसी इनफॉरमेशन कॉल करके एक्चुअली इनफॉरमेशन लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है और डायरेक्ट तुसी इन्हां दे नाल डील करनी है, विचकार कोई मीडिएटर नहीं है, तो वेरी गुड प्राइस ऊपर तो गुड क्वालिटी का सामान मिल जाएगा. ओके यश जी, आप लोकल जीटीए में ही सर्विसेज देते हैं या आउट ऑफ जीटीए भी अगर किसी ने करवाना हो तो?
1: सर्विस देते हैं, अभी कैलगरी शुरू हो चुकी है, वैंकूवर में शिपमेंट जा रही है, तो मोस्टली नेशन वाइड अब खुल रहा है, लेकिन अक्रॉस ओंटारियो, पूरा ओंटारियो हमने कवर कर चुके हैं. हमारे दो शोरूम्स हैं, दो फैक्ट्रीज हैं, तो पूरे ओंटारियो में हम सर्व करते हैं.
0: और इस टोरंटो में जीटीए में अपनी लोकेशन बता दें यश जी.
1: जी, हमारी दो लोकेशन है, 185 कार्लिंग व्यू ड्राइव, यूनिट 6 इटोबिको, वहाँ हमारी फैक्ट्री है. अगर शोरूम में जाना है तो 8917 दगोर रोड, सब्जी मंडी के प्लाजा में, सब्जी मंडी के एग्जैक्ट सामने ही यस विंडोज का शोरूम है.
0: बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त. 416-732-3600 ब्रैम्पटन वासियों, तुहाडे लई इट्स अ गुड न्यूज और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुहानू टोरंटो ऑल द वे जान दी जरूरत नहीं है. ब्रैम्पटन ईस्ट दे विच तुहानू ये सर्विसेज, एक्चुअली ब्रैम्पटन ਯੈਸ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਗੌਰ ਰੋਡ, ਗੌਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ 416-732-3600 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜੀ ਟੀ ਏ. ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰੋਮ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, 732-3600. ਯਸ਼ ਜੀ, ਧਰਮ ਜੀ, ਸੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜੀ. ਔਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ. ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਨੋਇੰਗ ਅਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਵਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲਟ.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशन टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.

0: कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा, खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें, लाहौरी गोट एंड चिकन कढ़ाई, शिनवारी चिकन एंड गोट कढ़ाई, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800
1: रेट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा

अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

0: Talk530.ca.
1: सांझा नु जुए परिंदे अपने घर मुड़ आउंदे ने।
2: शिफ्ट आते जद वतना तो दूर याद अपने फेर तो आउंदे ने।
1: कोई है जो करदा है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दीआं गल्लां।
2: पंजाबी गीतां नाल रौनका लगा के तुहाडे कम दीआं गल्लां।
1: वखरा टंग वखरा रंग
2: रेडियो जीदा वखरा अंदाज।
1: सो चज्जी जीवन शैली दी गल करता तुहाडा अपना रेडियो रेडियो अंदाज।
2: रेडियो अंदाज
1: सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना। नंबर टू कॉल 647-234-6000।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। शनिवार दी शाम दी महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो जी थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी हां एंड खुशामदीद एंड स्वागतम।

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? देवतात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: होल्डर गुड्डा सिंह रिपोर्टिंग सर। अंग्रेजी दी लत तोड़नी लाई है।
3: पता की मैं भी सच्ची बहुत दुखी आ इहदे तों।
2: ये बंदा पुछे भी तू शर्मा जे तेनू नहीं आउंदी तू ना बोल।
3: एग्जैक्टली
2: कुत्तियां नूं भौंकी जानी अंग्रेजी नाले आउंदी नहीं।
3: पता की गंडा सिंह जी
2: मेरे मुंह गाला निकल गया बिना गड्डी। फिर मैं कहा भी नहीं मन नूं समझा गंडा सिंह, इत्थे महकां लगियां हुंदियां ते फिर महकां नाल आवाज चले जांदी अगे।
3: माइक
2: मैं यार।

0: हाँ हरमन कौरी,
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली लग गई है।
0: हाँ
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे,
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर।
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है? फार्मस चाहिए, बैग चाहिए, दस्ताने चाहिए, कोटी। जैसे मेरी गल सुनो, एक जी काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर।
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है?
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरोगे उत्थे।
1: हेलो
0: नाले
1: एक मिनट, हेलो
0: एक्सक्यूज मी, जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया? चंगा लगा नी।
1: हेलो
0: मुक दी गल है, जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नूं भाई साहब मेरी कोई चीज अगले दा जवाक पाड़ दे, बाद च अगले पैसे ना देण, फेर कौन जिम्मेवार?
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा, बाकी गल्लां दीआं गल्लां।
2: रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, बई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

0: दास, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ दी?
1: ओए पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी ने रिंगटोन ते नची जाना।
0: है? वैसे मतलब काइंड ऑफ इद्दा दा ही।
2: अच्छा
0: एक्चुअली पता कि ताइवान दे विच ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है। उधर की है जड़े प्रोफेशनल मूर्नर्स होते ने, यानी कि जो लोग इद्दा खीरने पाउंदे ने उन्हां नूं लैके जांदे ने लोग। जदों किसे दा इद्दा दी कोई हैपनिंग हो जांदी है ना, उत्थे जाके फिर जड़े प्रोफेशनल लोग ने ओह रोक के दिखाउंदे ने कि इद्दा रोना चाहिए। ओए
2: होए होए
0: होए ए काम कर ला तू,
2: मतलब कहण दे
0: हां
2: कि भाई साहब बंदा सवेर तो लैके शाम तक कदी किसे दे पापे ली कदी किसे दे बाबे ली हां डाडा मारदा रवे है। मतलब इथे आके डिगी है तू देख लो भाई, है कोई मतलब अजकल तेन लगता है कोई ईमानदारी का जमाना है? भलाई का जमाना नजर आता
0: तेनू की क्या?
2: मेरी तुम गल बीबी वाला काम है, तेनू फिट बहना तू कर ट्राई ना, इतना सिर जहा सुट के लगी रही अगले पता नहीं लगना नाले रोंदी है हसदी है। तू तो मैनु कोई प्रोफेशन नहीं दस्या ना। मैं लव लेक
0: डरना
2: बन के तुसी खेतां जंगले दे खड़े रहो फुलवाड़ी च तुसी कां चिड़ियां डाउंदे रहो।
0: बिलकुल
2: काम तो वैसे नहीं जा रहा
0: तेरे तो, पर कोई बंदा नहीं डरदा कां चिड़ी मतलब
2: मेरी सुन गल कां चिड़ी ही डराने से बंदे नहीं डराने नाले दूजी गल ये नहीं समझ लगी भी भाई साहब जो तुसी कां ही डराने हैं ते सारा दिन उसे एक लाते मतलब तुसी मतलब डरना या बन के खलोते रहो उधर चंगा नहीं, पर जाके छावे बह जाओ।
0: अच्छा
2: ते जो कां चिड़ी को आंदा जापे
0: फोन
2: दो करा
0: हेलो
2: माड़ा कीता।
0: अच्छा या चार को कोल ठिकरियां जिया पत्थर रख ले छड़वाई मारया दूर ही
2: है
0: ना, पता की गल
2: है गोरे लोग भाई साहब तदी दे कामयाब।
3: हाय दिस इज पॉल एवनॉफ प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एवनॉफ कम्युनिकेशंस। थैंक्सगिविंग रिमाइंड्स अस टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल द गिफ्ट्स बिग एंड स्मॉल दैट लाइफ गिव्स अस। On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from every